सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक ए गुणनाम सुख मनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद उतार खासे दस खतका पातशाही दसवीं अकाल पुरख की रिचाम।

श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भगत श्री अकाल भ

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सब उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पछ को करेंगे भज केते।

लीनता हिते उपज सबता ही मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में कड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को बरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मडी मडली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पज हारे।

रूपं रेखं मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न वामं लेखं वेखं जोनि स्वरूपं।

न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखंगपेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशय छेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे।

छय विभूतेन जन्म न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्रे सो भूते भविके भवाने यचित्रे नारायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भयनिर्विखादं अछेदं भेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद अविक्ते यथा विभुक्तं गच्छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गतं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न परमं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के।

पूजा छ विद्याधर मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की दृष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपंग कहूँ मद्र बानी कहूँ शुद्र

कहूँ शुद्ध शेखंग ब्रह्म धर्मंग वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मंग ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहंग नेह देहंग त्याग गृहंग कहूँ जोग भोगंग रोग रागंग रोग हरता कहूँ भोग त्यागंग राजसाजंग राजरीतंग पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतंग कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाग्य कहूँ देव बानी कहूँ।

सदीव हर्ता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतपान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय याद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्य न अंग अच्छा स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कते, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतुल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत काम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तद पावत न पार, कई उर्ध पाह देशन भ्रमंत, कई उर्ध मध्य पावक जुलंत, कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद, कई गोक काव कथत कतेब, कई यगन होत्र कई बौनहार, कई कर्त कूट मृत को आहार, कई कर्त साक पै पत्र भच्छ, नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधरा बरीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जग याद करम, कहूँ अगन होत्र।

कई तीर्थ तीर्थ परमत सो भरम कई अघन होद्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप दास पायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेद मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई बजत एक पक निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायतन अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप दिश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन

जय जम्पो जुगण जूह जुअंग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तप ताप सर्प जलेर थलंघन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद भयंगन खंड भूत छेद छयंगन काल अपाल दयाल सुवंग जे ठटियंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंजे रचयंग देव देव परंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचयंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भूक भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न माद पितं जे रचयं छत्री छत्र छितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जेहे अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पदाव प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नकंस जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत

किन्नर जा छजुवांग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जा छबुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणं भव भूत भवेख भवान तुवांग जहे अंडज सेतज जे रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास की ओ फल फूल कली भो मेरा आकाश निवासित रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जे खंड अखंड प्रचंड किए जे छत्र उपाय जपाय दिए जे लोक चतुर्दशार रचे नर गंधर्व देवा देव सच्चे अंधूता भूता छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेदा भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जे राग नरंग नरेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जे बंधत देवा देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंग रचे।

जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुक्ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा नित पान पर जय फूकण धर्म सब तज है एक चित्त कृपा नित को जप है तव्यावसागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है।

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास जीव सर्वसात है अनाथ नाद नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दाग दग है अभूत भ्रम फेक है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेक शेख फेक है सदीव विश्ववर्ण है विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेख विश्ववर्ण है जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में विशेख अन्न मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बसावई पुराण यो पुराण नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कहो सु कैस पाइये जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट है न घाट बाट होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन।

अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के भूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा

पर है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्ता अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपे विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिय अगाध आदि जीव की अनाद बात मानिय न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिय सदैव सर्वलोक के कृपा लिख्याल।

जाचे किन्नर मछे मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रौ मुखचार सरब सबद पतार के तर जाप ही जय जाप आद देवा गाद तेजा नाद मुरत्या ताप जंत्र मंत्रण आवय कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहयो विराज धीराज राज प्रवीन जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसनंके बिखे।

पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ अपार भूमका जले थले मेहमानिये जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र बालक शत्रु।

चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा पुरंकन फणी फुंगारण ज्योत जिते सरदार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सेवा खासुर मर्दन भूमा का सल उर्द।

अघोग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणी अर्भुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकार चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विप्रतंते जोग जयंते मनुज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगुरु गमंकण शस्त्र जमंकण फणि अर्भुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट

तेज प्रकार खंड तुंत तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्क तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकार खण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत तुरंगण तिच्छ सरे कर्कसा।

उर्धंग बिरहद सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजदा जल थल महीप बंधन दुरंत जेह नेद नेद निस दिन उजरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल कर नित संतु बार गनी मन गारे पक्ष पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको व्रत पार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पद मापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराजक रोग रोहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देवा देव खपे अहंग मेव न भेव रखियो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव सके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद शोकिन श्री पद मापद पाए आद अनंत अगात तवेक सो भूत भविख भवान भय है अंत विहीन अनातम आबाद आगा दुख छिद्र छह है लोगन के करता हरता जल मै थल मै फरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह संबोधन नेह विरक्त अगे अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्रीपद माप

पताल रसा तरज भुजंग सब सिरण्याव पाए सके नहीं पार प्रवाहू को नित ही नित वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कते वन वेद लगे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तय को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब बचहारे भेद न पाए सके ओ न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे याद नगाद बेगद वेख जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष तपोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्य के छलैया महासतरण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जतैया।

पूर्वि न पार पाव हिंगुला हिमल जावे गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साध पौन साधना कि तेक बांध अरब के अरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी मान कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी बचाने निज काम है मरटा मंगिल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहेल माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शेष ने आवे तिब्बती

और काहू पे नदीन सद दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पछ बहुचत ताहे चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जो

होए जी वडे आप ते वडे तेरी दात जंदन कर कह की ती रात खसम वसा रहते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सदगुर सदपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे कर्म सतगुर

तब तापह जपह बेंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवडिया वर ना कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करै सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो ता भावै सोई थीसी जो तू दहे सोई हाँ पाई राव सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनों कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर वरड़ भैले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जुमोह पग नहीं चाले हम देखा तहड़ू बियले मन एक नचेत मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलियार हाओ

आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदा सिव निरंकार का छीनत नह भव आप आपनी बुध है जेती बारंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखान जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतभुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई एक बार जिन तो मैं संभारा काल फांस दे ताहि उबारा

जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारी मरिय देख तेग जग मैं दौ चल राख आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा।

जोर करो। जब आओ की औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चा।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत की ये फल होई आद ब्याज छह सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सतद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब

हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया दुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना के फ्रह चंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद।

भै विच कनकड़ै बेगार भै विच धरती दबी भार भै विच इंद फिरै सिर भार भै विच राजा धर्म दुवार भै विच सूरज भै विच चंद कहो करोड़ी चलत न अंत भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ भै विच आडाने आकाश भै विच जोत महाबल सूर भै विच आवह जावह पोर सगलिया पौ लिखिया सिर लेख नानक निर्भव निरंकार सच एक महला।

माले सबना जिन करते करना किया चिंता भे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जागत सुजुहारी स्वस्थ।